0: ने 100 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां दिवंगत शिबू सोरेन के आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। दिशोम गुरु की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आज राज्य के सभी जिलों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
1: पूरे राजभर में आदरणीय गुरुजी के याद में लोग एकत्रित हो रहे हैं। हर एक जिला आज उनके याद में राजनीतिक दल से ऊपर उठकर लोगों को इकट्ठे होते भी हम देख रहे हैं, क्योंकि आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी अपने आंदोलन के माध्यम से अलग पहचान बनाते बनाते उन्होंने योगदान दिया और धीरे धीरे वो राजनीतिक लकीर को पार कर इतना आगे चले गए जहाँ उनके पास नेता, विधायक, मंत्री सभी फीके पड़े।
0: दिशोम गुरु शिबू सोरेन को आज रांची स्थित कांग्रेस भवन में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान नेताओं ने कहा कि शिबू सोरेन का पूरा जीवन संघर्ष, सामाजिक न्याय और झारखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए समर्पित रहा।
2: दलित, शोषित, पीड़ित, यहाँ के आदिवासी, पिछड़े तमाम वर्गों के लोगों के हित के लिए वे बराबर संघर्ष करते रहे। उन्होंने सत्ता को नहीं बल्कि संघर्ष को, और उन्हीं के संघर्ष का देन है कि आज हम झारखंड अलग प्रांत में रह रहे हैं और यहाँ की अस्मिता के लिए हम सबों को एकजुट होकर के गुरु जी के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा ली।
0: साहिबगंज के सिद्धो कान्हू स्टेडियम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में जननायक पद्मभूषण शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर झामुमो नेताओं और स्थानीय लोगों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही राज्य के राजस्व, निबंधन, भूमि सुधार और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा द्वारा अनावरण किया गया।
3: समाज के निर्माता रहे गुरु जी, जन जंगल जमीन की आवाज को हमेशा मुखर होकर के उन्होंने उठाया। आज गुरु जी सिर्फ एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज के एक आदर्श। हम लोग चाहते हैं कि गुरु जी का त्याग, उनका संघर्ष और उनके बताए रास्तों को संसार आशंसा करते हुए जिसके सपनों का राज समृद्ध झारखण्ड और अग्रणी झारखण्ड बनाने का हम लोग।
0: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार मामले पर गंभीरता से नजर रखे हुए है, जांच जारी है और समय आने पर छात्रों की मांगों के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। इस बीच भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मामले में सरकार को शीघ्र ठोस निर्णय लेना चाहिए। उधर जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी सीबीआई जांच की मांग की।
4: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं, जेएसएससी और जेपीएससी सीजीएल के परीक्षाओं में गड़बड़ियों के लिए सीधे छात्रों से बातचीत की जाए और उनके मांगों के अनुरूप त्वरित कदम उठाए और न सिर्फ सीबीआई के जांच के आदेश दिया जाए बल्कि ऐसे प्रावधान भी बनाया जाए ताकि भविष्य में कोई अनियमितता बरतने की हिम्मत न कर सके।
0: राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत कल 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची और एएसडीडी सूची का ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मतदाताओं से मतदाता सूची में अपना विवरण जांचने और पात्र लोगों को नाम जुड़ाने के लिए जागरूक करने की अपील की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय कल पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक #NewVoters सोशल मीडिया अभियान भी चलाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
5: सेवा जोहार। तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10

0: अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5,000 से अधिक लोक कलाकारों झूमर छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियां, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
1: यहां मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खानपान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए। अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: देवघर के राजकीय श्रावणी मेले में आए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए झारखंड सरकार ने आज से विशेष हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत करा दी है। जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आज से देवघर और बासुकीनाथ के बीच किफायती हवाई सेवा का संचालन किया जा रहा है। टिकट की बुकिंग हथगढ़ मैदान में बनाए गए काउंटर से की जा रही है। विशेष जानकारी के लिए वेबसाइट www.jharkhandaviation.in और हेल्पलाइन नंबर 9122583111 पर जारी किया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार 7 अगस्त को जमशेदपुर स्थित ब्रह्म कुमारीज यूनिवर्सल पीस पैलेस रिट्रीट सेंटर से 10 करोड़ देशव्यापी नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे विशेष रूप से तैयार की गई नशा मुक्ति जनजागरण बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह अभियान ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नशा मुक्त भारत अभियान तथा गृह मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मिशन स्पंदन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। रिम्स में विश्व अंगदान दिवस के तहत सोसाइटी ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पोस्टर, निबंध, नुक्कड़ नाटक और प्रश्नोत्तरी जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से अंगदान के महत्व की जानकारी दी गई। चतरा जिले में पुलिस ने 2 युवकों को देसी पिस्तौल और कई कारतूस तथा अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वे दोनों भाकपा माओवादी संगठन के जोनल कमांडर मनोहर गंजू के निर्देश पर भुईयाडीह घाटी में फायरिंग कर मालवाहक वाहनों में आगजनी की घटना को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैलाने जा रहे थे। मौसम। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में इस सप्ताह अच्छी बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 8 अगस्त तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, आकाशीय बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। पद्म भूषण दिशम गुरु दिवंगत शिव सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने JPSC की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच CBI से कराने की मांग की। झारखंड में SIR अभियान के तहत कल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का किया जाएगा प्रकाशन। देवघर के राजकीय श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं के लिए आज से विशेष हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। और राजधानी रांची समेत राज्यभर में अच्छी बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 अगस्त तक भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
7: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे दुमका संवाददाता।
1: उप राजधानी दुमका में आज दीशम गुरु शिव सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। शहर के खिजरिया स्थित शिव सोरेन आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में दुमका के विधायक और गुरुजी के छोटे पुत्र बसंत सोरेन, जामा विधायक लुईस मरांडे तथा सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके संघर्ष और सपनों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर बसंत सोरेन ने कहा कि
2: बाल बच्चे पढ़े लिखे स्वावलंबी बने और वही प्रयास हम लोगों का भी है और पार्टी का भी यही दायित्व है और वो उस चीज को कर रही है और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो उनके अधूरे सपने हैं बहुत सारे पूरे हो रहे हैं, बहुत सारे बाकी हैं, सबको हम लोग पूरा करें।
1: जामा विधायक लुईस मारांडे ने गुरुजी के जीवन संघर्ष और उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि
3: आज पहले पुण्यतिथि के रूप में आज हम सारे लोग गुरुजी द्वारा स्थापित उनका आवासीय परिसर में हम सारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनको याद किए हैं और हम सारे लोगों को उनकी कमी खली है। उनका हम सभी ने देखा है कि वो किस तरह से गांव कैसे जाते थे, कैसे कहाँ बैठते थे, कैसे लोगों से बात करते थे।
1: दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव अपने उत्कर्ष पर है। मेले में अब तक करीब 4 लाख शिव भक्त और कांवरिया बाबा का जलाभिषेक कर चुके हैं। सावन की पहली सोमवारी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। रात 2:30 बजे मंदिर का पट खुला और सरकारी पूजा के बाद भोर 3:30 बजे से जलार्पण शुरू हुआ। आज मंगलवार को भी भक्तों की यहां भारी भीड़ रही। लोगों ने अर्घा के माध्यम से बाबा को जल अर्पित किया। मंदिर के पुरोहित सुबोध पंडा बताते हैं कि
4: श्रावण महाविशेष महीना होता है, शिव का ही महीना कहा जाता है, बहुत विशेष महत्व है जलाभिषेक का।
1: मंदिर के एक अन्य पुरोहित पप्पू पंडा ने बताया कि
5: सुल्तान से जो लोग जल भरते हैं तो एक जल बाबा बैद्यनाथ के लिए और एक जल बाबा बासुकीनाथ के लिए, बासुकीनाथ के बिना पूजा अधूरा माना जाता है।
1: भक्त बाबा का दर्शन और जलार्पण कर आनंद और सुख की अनुभूति से अभिभूत हो रहे हैं। भक्त बताते हैं कि
6: जितने भी मतलब लेडीज है, महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत खास है सोमवार, उनके लिए बहुत अच्छा है। हम जो भी मांगते हैं उपवास करते हैं, बाबा को कुछ भी मांगते हैं पूरा करते हैं, इसलिए आज बाबा का दरबार आए हैं।
1: एक अन्य भक्त ने कहा कि मेले में सांस्कृतिक आयोजनों के साथ साथ दुमका जिले के हस्तशिल्पों और महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए स्टॉल भी लगाए गए हैं। आजीविका मिशन से जुड़ी अंजू देवी बताती हैं कि बहरहाल इस वर्ष श्रावणी मेला 28 अगस्त तक चलेगा। मेले में आने वाले भक्तों को जिला प्रशासन द्वारा हर स्तर पर सेवा सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। आर की नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
0: अभी आप सुन रहे थे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे जिले में आजकल और प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:17 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज आपको हम बता दें कि आज भारतीय सिनेमा के महान पार्श्व गायक, अभिनेता, संगीतकार और निर्देशक किशोर कुमार का जन्मदिवस है। किशोर जी का असली नाम था आभास कुमार गांगुली और इनका जन्म खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपने 4 दशकों के करियर में हजारों यादगार गाने बनाए और उन्हें कई फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले। तो श्रोताओं, आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हीं के गाए कुछ गीत आपको हम सुनवाते हैं। तो चलिए, पेश है फिल्म तोहफा का ये गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। आप सुन रहे थे तोहफा फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। इस गीत को सुनना चाहते थे पुणे से पंकज बोड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी बोड़ोदे, चंद्रप्रभा बोड़ोदे। बेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवेनकर और धीरज सब्बा सेरे। जरूर वरूर महाराष्ट्र से बाबा साहेब बोड़ोदे, मीनाक्षी चरेपे, रजनी कानीरे, कार्तिक युवराज। चलिए अब अगला गीत आपको सुनाते हैं, फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी, किशोर कुमार की आवाज है, मजरू सुल्तानपुर के बोल हैं। और इस गीत को सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। खरसवा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, गौरव नायक, जलेश्वर नायक, भाई एस देहुरी। कुचाई तोटांगडी से विजय महतो, मुकेश महतो, दिलीप महतो, सुमन महतो, सूरजमणि महतो, रविंद्र महतो। चलिए इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: बात है।
1: श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम आपके पसंद अब यहीं संपन्न होता है। 8:15 पर पुनः आपसे मुलाकात होगी रजनीगंधा कार्यक्रम में। तब तक के लिए छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, यह आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको कुछ ही पलों में हम सुनवाते हैं कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसान वाणी।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को सुनीता हांसदा
2: और ठाकुर चंद्र मुर्मू का
1: जोहार। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। किसान भाइयों बहनों, आज हम चर्चा करेंगे मक्के की खेती के बारे में। तो आज हमारे साथ हमारे मित्र ठाकुर जी है और हम सभी किसान भाइयों को मक्के की खेती के बारे में जानकारी देंगे। मक्के की खेती हम सभी को पता है कि ये खरीफ सीजन का जो फसल है और ये हम जून से जुलाई के बीच तक जो है इसकी बुआई हम कर सकते हैं और ये समय जो है इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और इसकी अगर हम खेती करते हैं तो इसकी बीज दर क्या होनी चाहिए, ये सबसे पहले हमें इसका आंकड़ा लगा लेना चाहिए। प्रति एकड़ लगभग 6 से 8 किलोग्राम बीज की जो है हम इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी दूरी जो है अगर हम कतार से कतार लगाते हैं तो ये 18 से 24 इंच और पौधे से पौधे की दूरी जो होनी चाहिए वो 8 से 12 इंच रखी जानी चाहिए।
2: सही कथा। हां चसी भैया, मैं सीखो ने

0: ᱢᱟᱠᱠᱟ ᱠᱤ ᱠᱷᱮᱛᱤ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱵᱷᱚᱨᱯᱩᱨ ᱢᱟᱛᱨᱟ ᱨᱮ ᱯᱨᱳᱴᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱢᱟᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱟᱨᱵᱳᱦᱟᱭᱰᱨᱮᱴ ᱦᱚᱸ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱳᱥᱩᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱵᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱠᱠᱟ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱚᱱᱚᱲᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱩᱯᱚᱭᱩᱠᱛ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱱ ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱥᱚᱯᱛᱟᱦᱚ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱤᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱚᱱᱚᱲᱟ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭᱮᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱢᱟᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱢᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱞᱚ ᱛᱚᱢᱵᱟᱜ ᱢᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱤᱛᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱮᱭᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱭᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱲ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱤᱛᱤᱞᱟᱱ ᱦᱟᱥᱟ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱩᱱᱤᱛᱟ ᱢᱟᱹᱭ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱣᱟᱭ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱡᱚ ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱢᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱛᱮ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱱᱟᱰᱮ ᱟᱞᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭᱚᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱚᱱᱟ 60 ᱥᱮᱱᱴᱤᱢᱤᱴᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱜᱽᱵᱷᱟᱜ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱢᱚᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱤᱸᱪᱟᱭ ᱨᱮᱢᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱟ ᱵᱟᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱟ ᱥᱤᱸᱪᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤᱭᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱤᱪ ᱵᱤᱪ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱯᱛᱟᱦᱚ ᱨᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ 7-8 ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱥᱤᱸᱪᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱞᱟᱵᱷ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: किसान भाइयों बहनों, इसकी जो खाद या फिर हम उर्वरक प्रबंधन जो कहते हैं, जिसे जिस तरह का मतलब इंसानों के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, तो हमारे फसलों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए हम खाद लगा सकते हैं, खाद डाल सकते हैं। एक खाद होती है बेसल डोज, जो बुआई के समय प्रति एकड़ 50 किलो DAP या NPK और 25 किलो जो है पोटास का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ड्रॉप ड्रेसिंग अगर हम करते हैं, जैसे ड्रॉप ड्रेसिंग अगर हम डालते हैं, तो पौधों के 4 से 6 इंच या 1 फीट के होने पर यूरिया और जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी 45 किलो प्रति एकड़ होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम खाद का सही इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे फसल जो होते हैं, हमारे जो मक्के के जो पौधे होते हैं, वो सही रूप से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और उसकी वृद्धि भी अच्छी होती है। सबसे बड़ी बात होती है किसान भाइयों बहनों, खरपतवार नियंत्रण। हम सभी ने देखा है कि मक्के के जो पौधे होते हैं, उनके जड़ काफ़ी हद तक उभरे हुए रहते हैं, बाहर निकले हुए रहते हैं, तो उन्हें हम बीच बीच पे जो है मिट्टी से भरते रहे जब तक कि पौधा मजबूत ना हो। और इसके लिए अगर आसपास घास फूस भी रहे, खरपतवार रहे, तो उसमें जड़ की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। तो हमें उसके लिए भी जो है हमेशा खरपतवार नाशक का प्रयोग करना चाहिए, उसको समय समय पर उसे हटा देना चाहिए। और जब भी आपका फसल तैयार होता है, यानी कि जो मक्का की कटाई होती है, वो 95 से 120 दिनों के अंदर में ये तैयार हो जाती है।
0: तो उनका तो जहाँ लेकर बन बढ़ाए कि आज जहाँ जगह करे बन चासे आ अब उन जोनोड़ा बन चासे आ तो निहत ही उनका जगह रोहड़ जगह आलो तहन में हल्का नौसोम तहन में जीवन ते जहाँ इतना बन लगाओ या उना बेस सही अमुन उमा आर मुड़े खोन अब चास करते हुरु सला चास करते उना सांस सांते नुआ को हम बन चास करते लाभ बन नाम दाड़े आ।
1: अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं हेरो परब पर आधारित ये हो लोकगीत, फूलमती पाठ पिंगवा और साथियों के स्वर में।

0: किसान भाइयों बहनों, अभी आपने आनंद लिया हो लोकगीत का। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
2: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
1: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
3: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
1: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
4: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
1: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
5: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
1: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
6: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ।
1: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए

0: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
1: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
2: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
1: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।
3: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे थे जरूरी संदेश। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं आज के मेहमान भेंट वार्ता में। धान की खेती SRI विधि से कैसे हम कर सकते हैं, इस विषय पर, और इसकी जानकारी हमें दे रहे हैं अनूप हेम्ब्रम जी। उनके साथ बातचीत में या संकलन हम कह सकते हैं कर रहे हैं ठाकुर चंद्र मुर्मू। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
5: चसी बुझा कोनवा किसान वाणी कार्यक्रम रे जावगे एडीगा नवा नवा जिनिस को बन गपल मारा, तो तेहेन हो उनका के नवा जिनिस के बन गपल मारा और नवा जिनिस में लेखान तो ना तो चासबास समय करना और चासबास रे जहां लेकना आधुनिक तकनीक में ना चासबास रे नवा को कड़ी बड़ा नहीं लग।
6: जोहार
5: जोहार,
6: अलिंग ना अनुप कुमार हेम्ब्रम।
5: अच्छा, गाड़ी रिस्क करे कथा अनुप बाबू, लेकिन तब निये वर्ष इन आरो चले कना कमी को चला कना सरकार से
6: निये वर्ष इन दो नवा योजना को अडी कन चला कना जहां का प्रतिभूमि योजना को, मेड़बंदी को, फसल बीमा को और सोयल हेल्थ कार्ड रे मिट्टी जांच इमन को अडी कन चसी रे प्रोग्राम को चला कना।
5: ओहो, अच्छा अच्छा। अब नितो चास इदी कते हुनंग अलंग तेहें जहां
6: ओना
5: मतलब इने अलंग बड़ाया छे नितो जहां हुडु को चसी बुहा को एर अबखान रोहय आको तो चित बेस उन्नत प्रभेद को मेना अनवा हुडु करे।
6: अच्छा, हो ना न पय कथा जहां लेका अब दो अडी लंबा लंबा ढेर समय रे हुडु को रोहय ने ढेर दिन रिया कथा दो अ लिंग मेना नितर मा दा को कटे कष्ट लगन धारा हूँ को रोय लेखान एट दलहानी फसल को बदले बो एर
5: दिखाते
6: अब एरिया बखरा झारखंड बखरा मिल लेखान सहभागी भेराइटी में नपाय भेराइटी 120 दिन
5: 120 दिन फसल तैयार होता
6: फसल तैयार और कम दा मैंने दा ढेर बांग लगती।
5: अच्छा, नितो नुआ इते दो का ब्लॉक करे नमो करना छे का करे खन
6: नितो नुआ अब पश्चिम सिंहभूम रे नंडे 20 ग्राम को बिनाओ कना आडी गन्नावा ये से रे हटगमरिया करे जगन्नाथपुर करे 20 ग्राम खन को गे इते को बिनाओ कते लेम्स रे को हता माने जिला कृषि हता रोड कते आरो लेम्स रे इमा का है अखरिन बकरा।
5: ओ अच्छा,
6: अब किसान को बकरा नो सहभागी वैरायटी हो
5: सहभागी वैरायटी जा
6: हो हो
5: सीरीज करा। अच्छा, अनुप बाबू तकिन आरोनी कुलिंग बिना जदी आरो चसी को इटा हुडू को एरसना को अनखनवा चे लिखाते को उपचारिता।
6: अच्छा, और न पाए माने नोआ ओना लेम्स को में हिजुआ उपचार कते हिजुआ माने ट्रीटमेंट कते आदो आदो ओना हिसाब ते ओना उपचार लेका दो ओना बल्टी रे दा दोह लेखान आर ओंडे ओना बिली सी मिली मोमेन दो।
5: अच्छा अच्छा,
6: ओना ओंडे डुबुज बिन है चे आ चपे बिन आर ओंडे बाद बुलुंग एम इदि बिन इन धाबी एम बिन जब तक ओना अंडा ना बाय तैरा चितान धाबी हिजुआ।
5: अच्छा,
6: हो ताना बना अंडा तैरा एनखान चेतान रे चपे एनखान ओना बिली दो ओंडक बिन अंडा ना आर ओना बाद ओना जहां अब ओडा रे अहुडू बिना जहां बिन रोय लगे ओना ओंडे तुपु काते ये बिन तुपु बिन तुपु लेखान चे चेका जे ओना पेटे को दो खराब खराब फुडू को दो चेतान रे चपे।
5: अच्छा अच्छा,
6: आर बे सुडू दो लता रे तना जहां ना तोड़ाया तयम
5: तोड़ाया।
6: अच्छा, ओना चेतान पेटे तो गिडी कना आर लता रे जहां तपु ना ओना हुडू बो तोड़ाया अदो तोड़ा मणांग रे ना कटी रन को कटी लगती है।
5: अच्छा, चे लेखन रन को को लगती है
6: ओना ये फपूंद ना सक को में ना ओना मिटे जाने ये आ ओना बदरे के अडी गन टाइम ते बीमार नेमो
5: कीड़ा फूड जेलो
6: फूड फूड नेमो कीड़ा हको जेलो
5: अदो
6: ओना बखरा दो ना फपूंद ना सक ते मणांग ओना तोड़ा मणांग रे रन लेखन।

0: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱨᱟᱱᱟ ᱛᱚᱲᱟᱭ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱫᱚ?
1: ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ 1 ᱠᱤᱞᱳ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱟᱱ ᱞᱮᱭᱟ 1 ᱮᱠᱚᱨ ᱨᱮ 2 ᱠᱮᱡᱤ ᱵᱤᱡ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱨᱤ ᱵᱤᱫᱷᱤ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ 1 ᱠᱤᱞᱳ ᱤᱛᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱟᱹᱯᱩᱱ ᱱᱟᱥᱟᱠ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱟᱨᱵᱮᱱᱰᱤᱡᱤᱢ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱦᱮᱸᱪᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱵᱮᱱᱰᱟᱡᱤᱢ ᱦᱮᱸ ᱟᱨ ᱵᱮᱵᱤᱥᱴᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱷᱟᱹᱯᱩᱱ ᱱᱟᱥᱟᱠ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱚᱱᱟ 2 ᱜᱨᱟᱢ 1 ᱠᱤᱞᱳ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱨᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱟ ᱜᱷᱟᱴᱟ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱫ ᱟᱫᱷᱟ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱜᱟᱱ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱧᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱟᱥᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱩᱢᱩᱞ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱫ ᱠᱤᱴᱱᱟᱥᱚᱠ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱞᱳᱨᱳᱯᱟᱭᱨᱤᱯᱷᱚᱥ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱴᱱᱟᱥᱚᱠ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ 1 ᱠᱮᱡᱤ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ 2 ᱮᱢᱮᱞ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱤ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱱᱟ ᱜᱷᱟᱴᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱥᱟᱭᱟᱵᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱮᱜᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ 2 ᱮᱢᱮᱞ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱢᱟᱛᱨᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱢᱟᱛᱨᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱮᱸᱪᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱟᱫᱷᱟ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱟᱣᱮᱫ ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱵᱚ ᱛᱚᱲᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱚᱲᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱟᱭ ᱵᱤᱢᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱤᱢᱟᱨ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱵᱟᱭ ᱥᱟᱵᱟ
0: ᱚᱦᱚ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱛᱚᱲᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱜᱮ ᱱᱤᱯᱷᱩᱴ ᱜᱮ ᱛᱚᱲᱟᱜᱼᱟ
1: ᱦᱳᱭ
0: ᱟᱨ ᱛᱤᱡᱩ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ
1: ᱵᱟᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱦᱳᱭ ᱦᱳᱭ
0: ᱢᱟᱱᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱤᱢᱯᱚᱞ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱟᱞᱜᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱞᱜᱟ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱯᱪᱟᱨᱤᱛ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱦᱳᱭ ᱦᱳᱭ
0: ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱚᱲᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱴᱷᱤᱠᱚᱜᱼᱟ?
1: ᱚᱱᱟ ᱛᱚᱲᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱤᱢᱯᱚᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚ ᱛᱚᱲᱟᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮᱵᱚ ᱛᱚᱲᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱩᱱᱟᱹᱝ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱧᱚᱜ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱧᱚᱜ ᱨᱮ ᱛᱚᱲᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱚᱲᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱛᱚᱲᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱮᱲᱮ ᱮᱢ ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱟᱨ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱚᱲᱟᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱲᱟ ᱛᱩᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱞᱜᱟ
0: ᱟᱞᱜᱟ
1: ᱟᱨ ᱛᱚᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ 12 ᱠᱷᱚᱱ 14 ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ 12 ᱠᱷᱚᱱ 14 ᱫᱤᱱ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭᱟ
1: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭᱟ ᱦᱳᱭ
0: ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱦᱟᱲᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱮᱢᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱫ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ
1: ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱦᱳᱭ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱞᱮᱱᱠᱷᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟᱭ ᱟᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱰᱷᱮᱨ
0: ᱦᱳᱭ ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟᱭ ᱟᱲᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ 1 ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ 25 ᱫᱤᱱ 30 ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ
0: ᱦᱳᱭ ᱦᱳᱭ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱫᱚ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟᱭ ᱟᱲᱟᱜᱮᱫ ᱠᱚ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ 8 ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: 8 ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱟᱨᱵᱮᱱᱰᱟᱡᱤᱢ ᱢᱟᱱᱮ 1 ᱞᱤᱴᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ 2 ᱜᱨᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚ ᱛᱚᱲᱟᱵᱚ ᱟᱫᱷᱟ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱵᱚᱱ ᱰᱩᱵᱩᱡᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱚᱱᱟᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱧᱚᱜᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱚᱲᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱯᱮᱯᱮᱭᱟ ᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ
0: ᱦᱳᱭ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱛᱚᱵᱮ ᱤᱫᱤᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚ
1: ᱟᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱢᱮᱱᱴᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ 25 ᱥᱮᱱᱴᱤᱢᱤᱴᱟᱨ ᱱᱟᱜ ᱥᱮᱱᱴᱤᱢᱤᱴᱟᱨ ᱛᱮᱫᱚ
0: ᱦᱳᱭ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱚᱫᱷᱟ ᱥᱮ ᱯᱚᱫᱷᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱯᱚᱫᱷᱟ ᱥᱮ ᱯᱚᱫᱷᱟ ᱟᱨ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱥᱮ ᱞᱟᱭᱤᱱ
0: ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱥᱮ ᱞᱟᱭᱤᱱ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱚᱧᱮ ᱟᱨ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱚᱱᱠᱟ 25 ᱥᱮᱱᱴᱤᱢᱤᱴᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱟᱸᱜ 10 ᱤᱧᱪ ᱤᱧᱪ ᱛᱮᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱮᱨ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱚ ᱫᱟᱜᱤ ᱵᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱮᱨ ᱤᱭᱟᱹ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱤᱫᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱞᱜᱟ ᱛᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭᱚᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱥᱴᱚᱣᱟ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱵᱟᱭ ᱠᱚᱥᱴᱚᱣᱟ ᱵᱟᱭ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱮᱨ ᱨᱮ ᱫᱟᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ 10 ᱤᱧᱪᱤ ᱨᱮ ᱫᱟᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱡᱚᱵᱚ ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱟᱵᱚ ᱥᱚᱠᱛᱚ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮ ᱥᱚᱠᱛᱚ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ ᱛᱟᱢ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱥᱟ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱢᱟ ᱞᱤᱢᱵᱩ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱫᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱰᱚᱠᱮᱵᱟᱠᱚ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱡᱚᱴᱮᱫ ᱜᱮ ᱡᱚᱴᱮᱫ ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱜ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱹᱡ ᱫᱷᱟᱨᱟ
0: ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱦᱮᱫ ᱵᱟᱥ
1: ᱤᱱᱟᱹᱜᱮ
0: ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱭ ᱪᱟᱯᱮᱜᱼᱟ
1: ᱵᱟᱭ ᱪᱟᱯᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱨᱥᱤᱧ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱸᱫᱟᱹᱲ ᱠᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱹᱨᱥᱤᱧ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱟᱜ ᱟᱞᱚ ᱞᱤᱸᱜᱤᱱ ᱢᱟ ᱨᱚᱢᱚᱜ ᱢᱟ ᱵᱟᱹᱨᱥᱤᱧ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱤᱸᱫᱟᱹᱲᱟᱜ ᱦᱩᱲᱩ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱟᱨ ᱨᱮᱦᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱚᱜᱚᱱᱮ ᱥᱟᱵᱟᱭ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱟ ᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱦᱮᱲᱮᱫ ᱜᱟᱹᱪᱷᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱵᱟᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱤᱪ ᱵᱤᱪ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱚᱱᱚᱵᱤᱰᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱚᱵᱤᱰᱟᱹᱨ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱟᱨ
1: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱪᱟᱯᱮ ᱰᱷᱮᱨ ᱵᱚ ᱪᱟᱯᱮ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚ ᱩᱱ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱦᱟᱵᱷᱟᱜᱤ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱱᱟᱜ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱠᱚᱢ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱱᱚᱥᱚᱢ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱚᱦᱚ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮᱯᱮ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱯᱨᱚᱛᱥᱟᱦᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱜᱮ ᱥᱟᱦᱵᱷᱟᱜᱤᱛᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱥᱟᱦᱵᱷᱟᱜᱤ ᱦᱳᱭ
0: ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱛᱚᱲᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
1: ᱦᱳᱭ ᱦᱳᱭ
0: ᱮᱨᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ
1: ᱮᱨᱢᱟ ᱟᱨ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱢᱯᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱡᱽ ᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱮᱢ ᱠᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱤᱡᱽ ᱠᱚ ᱩᱛᱯᱟᱫᱚᱱ ᱮᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱡᱽ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱩᱛᱯᱟᱫᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱷᱚᱛ ᱠᱚ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱢᱚᱜᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱷᱚᱛ ᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱮᱢᱟ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱰᱤᱭᱮᱯᱤ ᱤᱭᱩᱨᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱮᱢᱟ ᱰᱷᱮᱨ ᱢᱟ ᱯᱚᱴᱟᱥ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱮᱢᱮᱜᱼᱟ ᱯᱚᱴᱟᱥ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱰᱤᱭᱮᱯᱤ ᱫᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱮᱦᱚᱵ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱡᱟᱵ ᱵᱚ ᱞᱚᱥᱚᱫᱟ ᱪᱮᱫ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱩᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱫ ᱤᱭᱩᱨᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟᱫ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱤᱭᱩᱨᱤᱭᱟ ᱥᱩᱢᱩᱝ
0: ᱤᱭᱩᱨᱤᱭᱟ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱛᱮ
1: ᱦᱳᱭ ᱤᱭᱩᱨᱤᱭᱟ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱚ ᱠᱚᱱᱚ ᱵᱤᱰᱟᱹᱨ ᱵᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣᱟ ᱩᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱧᱚᱜ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱵᱚ ᱟᱨ 15 ᱫᱤᱱ 25 ᱫᱤᱱ 35 ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ 35 ᱫᱤᱱ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱜᱮ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱟᱲᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱚᱻ ᱟᱪᱪᱷᱟ 35 ᱫᱤᱱ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱜᱮ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱟᱲᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱦᱳᱭ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱠᱚ ᱛᱚᱲᱟᱭᱮᱜᱼᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱢᱟᱱᱱᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱛᱚᱵᱮᱜ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱮᱭᱟ ᱯᱩᱱᱭᱟᱹ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱮᱡ ᱜᱮᱠᱚ ᱟᱲᱟᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱞᱮᱴ ᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱞᱮᱴ ᱦᱚᱸ ᱞᱮᱴ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱤᱭᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱲᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱵᱤᱥᱮᱥ
1: ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱢᱟᱵᱚ ᱜᱟᱹᱰᱭᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱮ ᱛᱟᱥᱟᱫ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱚᱰᱚᱠ ᱥᱟᱱᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱛᱟᱥᱟᱫ ᱜᱚᱜᱚᱡᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱥᱯᱨᱮ ᱦᱚᱸᱵᱚ ᱥᱯᱨᱮ ᱟᱵᱚ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱟᱱᱞᱮ ᱟᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱛᱟᱨᱟ ᱦᱮᱸ ᱪᱮᱫ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱛᱟᱨᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱚ ᱥᱯᱨᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟᱫ ᱠᱚ ᱵᱟᱭ ᱚᱢᱚᱱᱚᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 240 ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ 240 ᱦᱮᱸ ᱪᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱞᱤᱠᱩᱭᱤᱰ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱞᱤᱠᱩᱭᱤᱰ ᱫᱟᱜ ᱨᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱳᱛᱚᱞ ᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ 2 ᱮᱢᱮᱞ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ 2 ᱠᱷᱚᱱ 2.5 ᱮᱢᱮᱞ 1 ᱞᱤᱴᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱜᱳᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱱ ᱥᱯᱨᱮ ᱠᱮᱜ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮ ᱦᱮᱸ ᱪᱮ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱰᱷᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱥᱯᱨᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱜᱚᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ 2 ᱮᱢᱮᱞ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱯᱨᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ 1 ᱞᱤᱴᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱛᱟᱨᱟ ᱱᱟᱜ ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱛᱟᱨᱟ ᱦᱮᱸ ᱪᱮ ᱟᱨ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱡᱟᱵ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱚᱲᱟ ᱪᱚᱲᱟ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱫᱚ ᱚᱢᱚᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱷᱟᱸᱥ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱚᱢᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱧᱚᱜ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱩᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱭᱩᱴᱟ ᱠᱩᱞᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱤᱭᱩᱴᱟ ᱠᱩᱞᱟᱹᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱫᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱫᱟᱜ ᱨᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱜᱷᱟᱸᱥ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱩᱡᱩᱜᱼᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜᱼᱟ
0: ᱜᱷᱟᱸᱥ
1: ᱛᱟᱥᱟᱫ ᱠᱚᱜᱮ ᱜᱩᱡᱩᱜᱼᱟ ᱦᱳᱭ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱵᱚ ᱥᱯᱨᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱦᱳᱭ ᱥᱨᱤ ᱵᱤᱫᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱠᱚᱢ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱢᱮ ᱠᱚᱢ ᱯᱟᱱᱤ ᱢᱮ ᱠᱚᱢ ᱠᱷᱚᱨᱪ ᱢᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱯᱚᱡᱽ ᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱳᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚᱢ ᱠᱷᱚᱨᱪ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱤᱛᱟᱹ 1 ᱮᱠᱚᱨ ᱨᱮᱵᱚ ᱤᱛᱟᱹ ᱵᱚ ᱮᱨᱟ ᱚᱱᱟ 40 ᱠᱤᱞᱳ 50 ᱠᱤᱞᱳ ᱜᱟᱱ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ 5 ᱠᱤᱞᱳ ᱜᱮᱢ ᱨᱚᱦᱚᱭᱮᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱤᱛᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ
0: ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ
1: ᱦᱳᱭ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱥᱤ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱵᱚ ᱯᱟᱲᱟᱜᱟᱵᱚ ᱮᱢᱟᱱᱟᱵᱚ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱠᱟᱲᱦᱟᱱᱟᱵᱚ ᱜᱟᱹᱪᱷᱤᱭᱟᱵᱚ ᱚᱱᱟᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱤᱫᱷᱟᱹ ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱵᱤᱱ ᱟᱨ ᱵᱤᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱠᱚᱢ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱮᱱᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱵᱤᱰᱟᱹᱨ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟᱫ ᱚᱰᱚᱠᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱵᱤᱰᱟᱹᱨ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ 2 ᱦᱚᱲ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ 1 ᱮᱠᱚᱨ ᱵᱟᱹᱨᱥᱤᱧ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱤᱱ ᱦᱮᱲᱮᱫ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱤᱱ ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱜᱩᱸᱰᱟᱹ ᱩᱛᱟᱹᱨᱟ ᱵᱟᱹᱨᱥᱤᱧ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱲ ᱛᱮᱢ ᱦᱮᱲᱮᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ 5 ᱦᱚᱲ 6 ᱦᱚᱲ ᱟᱹᱪᱩ ᱠᱟᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ 10 ᱫᱤᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱠᱚ 10 ᱫᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟᱫ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱮ ᱡᱚᱢᱮ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱨᱥᱤᱧ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱠᱚᱱᱚ ᱵᱤᱰᱟᱹᱨ ᱛᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱥᱟᱫ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱞᱤᱧ ᱚᱱᱟᱞᱤᱧ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱵᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱛᱚ 1 ᱥᱮ 1.5 ᱤᱧᱪ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱦᱳᱭ
0: ᱟᱨ
1: chola hobo er dareya kusari hobo reya tisi ho masur ko imana ko jahan legan dalhan jinis telan jinis ko hobo onde bo er dareya ama enkan non kana ko bo chasma taki mit so mane somoy re hudu ekla do banga etaga fasal hobo hataw dareya ama
0: ine bot ine kedar
1: kon ine kedar kon ge hoy ar onde sinchai riya ho bai lagti kana ona namite ke tabo hoyuk kana
0: to enkan adi adi sarhalin ma bina anu hembrom babutikin chikate adi gan somoy bin em ki ale akashvani parivar lagin ar noa kisan wani karskaram lagin noa lagat ar hom idali set kola sa hai johar
1: na abin ho johar ar joto kisan bhai ko johar
2: kisan bhaiyo behno abhi aapne jankari prapt ki dhan ki kheti SRI विधि से हम कैसे करें इसकी जानकारी दे रहे अनूप हेमरोम और उनसे बातचीत कर रहे थे ठाकुर चंद्र मुर्मू।
3: इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
2: किसान भाइयों बहनों, इन्हीं जरूरी संदेशों के साथ ही आज का हमारा किसान वाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम में फिर से आपसे मुलाकात होगी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम से सुनीता हांसदा और
1: ठाकुर चंद्र मुर्मू को दीजिए विदा।
2: जोहार। श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे संसद समीक्षा बस कुछ ही पलों में।

चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। उच्च सदन की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान की चोरी का मुद्दा उठाया, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी बात रखने के लिए कहा। खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति की अनुमति से बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है उसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब ये दल चंदा चोरी के मुद्दे पर नाटक कर रहे हैं। इस बीच द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सदस्य तिरुचि शिवा ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच शून्यकाल में दो सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने देश में परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिवहन आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन समय की आवश्यकता है। भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कौशल विकास केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं तथा शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि औरैया में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न भी पूछे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके जवाब भी दिए। प्रश्नकाल के दौरान लगातार नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश की अनुमति से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भाजपा की दर्शना सिंह, विश्वजीत सिन्हा, साधना सिंह, तृणमूल की ममता ठाकुर, द्रमुक के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के संतृप्त मिश्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मीदा रघुनाथ रेड्डी, अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरई, एम धनपाल, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, माकपा के वी शिवदासान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो और शिवसेना की ज्योति नागनाथ वाघमारे ने हिस्सा लिया। चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने माना कि देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नागरिकों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विलंब से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराने से होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि जिन बच्चों का जन्म किसी अन्य देश में हुआ है ऐसे बच्चों का भी जन्म भारत में दिखाया जाए और इसके लिए कानून की खामियों का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने आगाह किया कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी सही व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं है तथा इस प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 3.5 लाख से अधिक पंजीकरण केंद्र हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि देश में जन्म पंजीकरण स्तर 2014 में 86.6% था, जो 2024 में बढ़कर 99.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 72.5% था, जो बढ़कर 99.4% हो गया है। राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से देश और लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। मंत्री ने कहा कि सरकार जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जन्म या मृत्यु होने के 2 वर्ष के बाद यदि सूचना दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रार पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में जन्म और मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर सूचना देने वाले मामलों में जो पुराने प्रावधान लागू हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने 2 साल से अधिक की अवधि वाले मामलों के लिए प्रावधानों में बदलाव करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि देश चाहता है कि भारत माता की गोद में पैदा होने वाली हर संतान का रजिस्ट्रेशन हो। ये मोदी सरकार का संकल्प है। साथ ही जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत बनकर तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का मतदाता बना रहता है, ऐसे भूतों से देश छुटकारा चाह रहा है। राय ने कहा कि इसलिए समय से मृत्यु का पंजीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। उच्च सदन में यह विधेयक पारित होने

बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामा थमते न देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने आज विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शोर शराबे के बीच ही सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा तो विपक्षी के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्न उत्तर होते हैं और सभी से अनुरोध है कि कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मैंने कल भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से ये अनुरोध किया था। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और चर्चा एवं संवाद के लिए है। ये नारेबाजी करने और तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विपक्ष के जिन सदस्यों ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने के विरोध में बोलने के लिए नोटिस दिया था, उन्होंने आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया। इस विधेयक का उद्देश्य संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करते हुए उन्हें सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाना है। ये मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। आयकर अधिनियम 2025 तथा आयकर अधिनियम 1961 में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कर निर्धारण, अपील, दंड और अभियोजन से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया है। कुछ मामलों में दंड की राशि बढ़ाने तथा कुछ मामलों में कर की दरों का युक्तिकरण करने का प्रस्ताव है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिस्थितियों में दंड एवं अभियोजन से राहत का दायरा बढ़ाया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल भले ही नहीं चल सका, लेकिन सरकार ने कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वर्ष 2024 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में 254 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इन लोगों के कब्जे से 40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। मंत्री के अनुसार 103 विदेशी नागरिक अनिवार्य किराएदार सत्यापन के बिना किराए के मकानों में रह रहे थे। इस मामले में 63 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक अन्य लिखित उत्तर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एनक्रिप्टेड संचार एप्लीकेशन तथा डार्कनेट के माध्यम से संचालित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए खुफिया जानकारी आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि डार्कनेट आधारित मादक पदार्थ तस्करी तथा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाले लेन देन की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है।
मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल संबंधी विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सभी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में समर्पित डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी सेल स्थापित करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, उन्नत तकनीकों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से साइबर सक्षम संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देशभर में इस वर्ष 1 मार्च से अब तक लू के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,853 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में लू से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जबकि तेलंगाना में सबसे अधिक मामले सामने आए। राय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने 2026-31 अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन कोष SDRF तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों के अंतर्गत लू और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब SDRF और NDRF के माध्यम से राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लू से बचाव और उसके प्रभाव को कम करने से संबंधित परियोजनाओं को भी आपदा न्यूनीकरण निधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हालिया गिरावट का मुख्य कारण भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश की वृद्धि है। उनके अनुसार शुद्ध FDI वर्ष 2024-25 में घटकर 1 अरब अमरीकी डॉलर रह गया, जबकि ये 2023-24 में 10.2 अरब डॉलर तथा 2022-23 में 28 अरब डॉलर था। जितिन प्रसाद ने कहा कि शुद्ध FDI प्रवाह में हालिया रुझान भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेश की बढ़ती वापसी से जुड़ा हुआ है। जितिन प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ से देश का निर्यात 2025-26 में 11.8% बढ़कर 16,36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि SEZ की क्षमता का अब बेहतर उपयोग करने, निवेश आकर्षित करने तथा उन्हें घरेलू आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रहती है, ताकि इन निर्यात क्षेत्रों की परिचालन दक्षता में वृद्धि हो सके। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण लगातार 12वें दिन आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे संसद समीक्षा। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, रजनीगंधा कार्यक्रम में आज आपको हम किशोर दा के गाने कुछ सुनवाएंगे। आज किशोर दा का जन्मदिवस है, जो हमारे महान पार्श्व गायक थे। पार्श्व गायक के साथ साथ वो निर्देशक, संगीतकार और बहुत अच्छे अभिनेता भी थे, तो हम उन्हें श्रद्धा

करते हुए उनके कुछ गीत आपको सुनवाते हैं। श्रोताओं, सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नौकर का ये गीत, किशोर कुमार की आवाज है, साथ में आशा भोसले हैं, मजूर सुल्तानपुर के बोल हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, अमित गोप, सुमित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, विक्की गोप, शुभम गोप, विनोद गोप, राजू गोप, राजन गोप, माहिर गोप, ये हैं सरायकेला गांव कीता से। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा और योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। चलिए, इन सब की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं फिल्म नौकर का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छाप के साथ। श्रोताओं, किशोरदा के बारे में आपको हम कुछ बताते हैं। उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके बड़े भाई अशोक कुमार एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, जिनकी प्रेरणा से किशोर ने फिल्म में कदम रखा था। उन्होंने बतौर अभिनेता फिल्म शिकारी 1946 ईस्वी और बतौर गायक फिल्म जिद्दी 1948 में शुरुआत की थी। उन्होंने गायन के अलावा अभिनय, संगीत निर्देशन, गीत लेखन और फिल्म निर्माण भी किया। तो चलिए किशोरदा की आवाज़ में और एक गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है प्यारा दुश्मन। इस गीत को सुनना चाहते हैं मौलडिया सोनवा से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी वंदिनी, संतोषी, दीपक, संतोष, राहुल, अनु, तनु, भाई नंदू महतो, गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, किशोर महतो। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बीरक, जेतेंग बीरक और मीका बीरक। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम सुनवाते हैं आपको ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबसा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। अब आपको सुनाते हैं, फिल्म का नाम है सर, कुमार शानू की आवाज़ है, कातिल सजाई के बोल हैं, संगीत है अनु मलिक का। इस गीत को सुनना चाहते हैं पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनजी दीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, भाटापारा धुरा बांधा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू और युवराज साहू, सरायकेला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी मुंडरी, हीरामानी मुंडरी, हिमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानम सिंह मुंडरी, सिद्धी बोस, सोना बापू सोना, एफ एम शिवा मुंडरी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, रुचि विनीत आहूजा, निमित निशान गगनेजा, ग्राम पंचायत बठेना बलकर से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहाद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा। चलिए, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं सर फिल्म का ये प्यारा संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको हम सुना रहे हैं फिल्म गोपी किशन का ये गीत पूर्णिमा और कुमार शानू की आवाजों में। इस गीत को सुनना चाहते हैं बड़ा बाम्बो सुपाई साई से देवेंद्र ताती, प्रकाश ताती, कुमारी निशा ताती, राकेश ताती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, ठाकुर प्रसाद गुप्ता, सुशांक सिंहदेव, सुदर्शन प्रमाणिक, ईश्वर बांड्रा, ललित बाबू और देवन बाबू। पुंडाकाटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, नंदनी महली, साजीव महली, विजय बेसरा और एनएस महली। छोटा नेमडी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, रोहन कुमार, ऋतिक कुमार, कोमल कुमारी। तुरी टोला चाईबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो हरी, खुशी कुमारी, रिया कुमारी और अर्पिता कुमारी। चांडिल ग्राम हरुडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनमेहनी महतो, मनोरमा और दीनबंधु महतो। सेंटोला चाईबासा से भोला राम मधुर, विनोद कुमार पवन, मीना पवन, बेबी देवी और नताशा। चलिए, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म गोपी किशन का ये गीत।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है। अब छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद

0: मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओसी के नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
3: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
1: पंजाब पुलिस ने आईएसआई समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
4: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यूपीआई ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
6: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना है।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Parliament passes Registration of Births and Deaths Amendment Bill to make delayed registration more stringent. Supreme Court directs Reserve Bank of India to prepare and circulate a SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. 274 fugitive criminals brought back to India from 36 countries between 2019 and 2026, says Home Ministry. New Delhi terms so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce. Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia felicitates Indian medal winners after successful Glasgow Commonwealth Games campaign. And in badminton, Indian pair of Krishna Prasad Garaga and Prithvi Krishnamurthy Roy advances to the men's doubles second round at Korea Masters Tournament in Assam. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nithyananda Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. We have more from a correspondent.
8: The objective of this bill is to prevent delays in the registration of births and deaths and to encourage people to register in a timely manner. The bill provides that if a birth or death is reported to the registrar more than 1 year but within 2 years, it may be registered only with the approval of the district magistrate, sub-divisional magistrate or an executive magistrate. The bill further states that if a birth or death is reported to the registrar more than 2 years, it will be registered only on the order of the judicial magistrate of the first class. The bill also mandates that the designated authority must verify the authenticity of the reported birth or death before granting permission for delayed registration. The registration of births and deaths is mandatory and the certificate issued provides legal identity to an individual. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
7: The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पार्लियामेंट ने पैदाइश और अमवात से मुतालिक इंदिराज के तरमीमी बिल 2026 को मंजूर कर लिया है ताकि ताखीर से इंदिराज को ज्यादा सख्त बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधही से मुंसलिक बैंक खातों से निमटने के सिलसिले में कामकाज के मियारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुतालिक मालूमात आम करने की हिदायत दी हैं। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद बल्दियाती इंतखाबात को मजहका खेज करार दिया है। वजारत दाखिला ने कहा है कि 2019 और 2026 के दरमियान 36 ममालिक से इक्तसादी जराइम के मुर्तकिब 274 मफरूर अफराद को वापस भारत लाया गया है। खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में तमगा जीतने वाली भारतीय खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई की है। और बैडमिंटन में आसन में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की भारतीय जोड़ी कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को आज मंजूर कर लिया, जिसके बाद इस कानून को पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई है। लोकसभा इस बिल को पहले ही मंजूर कर चुकी है। दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने ऐवाने बाला में इस बिल को पेश किया, जिसका मकसद पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन के कानून 1969 में तरमीम करना है। इस बिल को मंजूर करने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल का मकसद पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन में ताखीर को रोकना और लोगों की बरवक्त इंदराज के लिए हौसला अफजाई करना है। इस बिल में ये गुंजाइश मौजूद है कि रजिस्ट्रार के पास पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन में अगर एक साल से ज्यादा ताहम दो साल से कम की ताखीर होती है तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद ही मुमकिन हो सकेगा। बिल के मुताबिक रजिस्ट्रार के पास पैदाइश और अमवात का इंदराज करने में दो साल से ज्यादा की ताखीर होती है तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के हुक्म पर ही किया जा सकता है। ये बिल इस बात को भी लाजमी करार देता है कि नामजद अथॉरिटी ताखीर से हो रहे रजिस्ट्रेशन की इजाजत देने से पहले रिपोर्ट की गई पैदाइश या अमवात की तस्दीक कर लें। पैदाइश और अमवात का रजिस्ट्रेशन लाजमी है और इससे मुतालिक जारी किया गया सर्टिफिकेट किसी फर्द को कानूनी पहचान फराहम करता है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: इससे कबल पहली मरतबा मुलतवी होने के बाद ऐवान बाला की कार्रवाई जब दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने अपोजिशन अराकीन के हंगामे के दरमियान वक्फे सवाल चलाने की कोशिश की। कुछ अराकीन ने सवाल पूछे जिनका वुजरा ने जवाब भी दिया। ताहम अपोजिशन अराकीन की जानिब से एहतजाज और नारेबाजी के बाद चेयरमैन ने राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। इससे पहले जब ऐवान बाला की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई तो राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे की मुबैना चोरी का मामला उठाया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की मुखालफत की थी, अब आवाम को चढ़ावे की मुबैना चोरी के मामले में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब रिजिजू ने कहा कि ऐवान सभी का है और अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस इसे तफवीज किए गए वक्त का गलत इस्तेमाल कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओसी के नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा ने आज तख्सीस बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इस बिल को मंजूरी देने के बाद ऐवान ज़ेरीं की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल 2026 पेश किया। अपोजिशन अरकीन नीट पेपर लीक मामले पर तलबा एहतजाज के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई पर बार बार ऐवान ज़ेरीं की कार्रवाई में रखना डालते रहे। صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج اڈیشہ کے گنجم ضلع کے تپت پانی میں پوتر ماں کندھونی دیوی گئیں اور وہاں پوجا ارچنا کی۔ یہ ان کی آبائی ریاست کے جاری 3 روزہ دورے کا ایک حصہ تھا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھگوان شیو کے قدیمی مندر میں بھی پوجا کی۔ اس سے قبل دن میں انہوں نے صدارتی ریل گاڑی کے ذریعے بھونیشور سے بہرامپور کا سفر کیا جو دلی سے آئی تھی۔ بہرامپور سے صدر جمہوریہ نے مندر پہنچنے کے لیے تقریباً 75 کلومیٹر سڑک کا راستہ طے کیا۔ اڈیشہ کے گورنر ہری بابو کمبھم پتی اور وزیر اعلی موہن چرن مانجھی ان کے ہمراہ تھے۔ مشرقی گھاٹ کی خوبصورت پہاڑیوں کے درمیان واقع یہ مندر ماں کندونی دیوی کو وقف ہے اور یہ گندھک کے قدرتی جھرنوں کے لیے مقبول ہے، جن کے بارے میں عقیدت مند مانتے ہیں کہ ان میں شفا یابی کی خصوصیات ہیں۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بہار کے سابق گورنر ڈی وائی پاٹل کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ڈی وائی پاٹل اپنی انسان دوستی اور بالخصوص تعلیم کے ذریعے سماج کی خدمت کرنے میں ہمیشہ پیش رہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی غمزدہ خاندان کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا اور مشکل کی اس گھڑی میں ان کے لیے حوصلے کی دعا کی۔ سپریم کورٹ نے آج بھارتی ریزرو بینک کو فرضی کھاتوں اور سائبر دھوکہ دہی سے منسلک بینک کھاتوں سے نمٹنے کے سلسلے میں کام کاج کے معیاری ضابطے تیار کرنے اور ان سے متعلق معلومات عام کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ عدالت عالیہ نے ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں اور بینکوں کو بھی سلسلے وار ہدایات جاری کی ہیں تاکہ شکایات کے ازالے کو مستحکم کیا جا سکے، دھوکہ دہی سے حاصل کی گئی رقم کی بحالی میں تیزی لائی جا سکے اور ڈیجیٹل دھوکہ دہی معاملات سے نمٹنے میں بہتری پیدا کی جا سکے۔ عدالت عظمیٰ نے آر بی آئی سے سبھی ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل کو ایس او پی کی کاپی فراہم کرنے کو بھی کہا ہے اور ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ شکایات کے ازالے اور رقم کی بحالی کے طریقہ کار کو یقینی بنانے میں تیزی لائیں۔ انتخابی کمیشن نے دلی میں جاری ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی ایس آئی آر

0: Manhattan.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के बढ़ते उपयोग और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रोनेन्द्र सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार, मैं हूं मनोज पाठक और मंथन कार्यक्रम का ताजा अंक लेकर हम हाजिर हैं। आज हम देश में ईवी क्रांति पर चर्चा करेंगे और विशेष रूप से ईवी क्रांति के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं, क्या सब चुनौतियां हैं, इस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं देश के ऑटो सेक्टर के जाने माने विशेषज्ञ रोनेन्द्र सिंह। रोनेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: थैंक यू मनोज जी।
2: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि भारत में ईवी क्रांति के लिए वर्तमान में उपलब्ध बाजार का आकार क्या है और इस बाजार में मांग तथा आपूर्ति की क्या स्थिति है।
3: इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो जर्नी है वो भारत में करीबन 2007-08 से शुरू हुई थी। उस वक्त ज्यादा सपोर्टिव पॉलिसी नहीं थे तो इसकी वजह से वो दोबारा फिर वो थोड़ा सा मार्केट जो है वो डप पड़ गई। बट उसके बाद अभी 2014-15 के बाद क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है अलग अलग स्कीम ले आए, जैसे शुरू में फेम स्कीम ले आए जिसमें हालांकि कमर्शियल व्हीकल्स का ज्यादा कुछ नहीं था बट पैसेंजर व्हीकल्स और आपके टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स का बहुत ज्यादा महत्व था उसमें। तो उसके अंदर भी काफी गाड़ियां बिकी जिसमें हमारे जो पैसेंजर व्हीकल्स थे वो भी इंक्लूडेड थे जिस स्कीम के अंदर, और उसमें काफी फायदा भी हुआ कंपनीज को एज वेल एज यू नो कस्टमर्स को। बट उसके बाद फेम के बाद जो पीएम ई ड्राइव जो पुश हुआ 2014 से, जैसे फेम खत्म हो रहा था तो इसको हम फेम टू के बाद फेम थ्री भी कह सकते थे, लेकिन उसका गवर्नमेंट ने नाम चेंज करके पीएम ई ड्राइव रख दिया, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव करके ना ई ड्राइव करके रख दिया। उसके अंडर अभी जो है काफी बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद से क्या हो रहा है कि जो हम लोग 5% और पहले साल में 2.5% जो थ्री व्हीलर्स और टू व्हीलर्स को दे रहे थे उसकी वजह से काफी सेल्स पिकअप हुई है पिछले 2 सालों में। अगर थोड़ा आंकड़े रखे तो जैसे अभी जो है हर महीने करीबन 2 लाख टू व्हीलर्स बिक रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा है मुताबिक यू नो कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और उसके पहले तो लास्ट ईयर करीबन 1 लाख भी टच नहीं हो पाए थे और लास्ट ईयर करीबन 1 लाख टच हुआ था पर महीना। तो अभी क्या हो रहा है पर महीना जो है रूटीन 2 लाख के करीब बिक रहा है। हम लोग जो जून मंथ जो था वो जून 2026 जो था वो बेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मंथ था जिसमें काफी गाड़ियां बिकी है, इलेक्ट्रिक कार्स कह लो या थ्री व्हीलर्स कह लो टू व्हीलर्स सारे पिकअप हुए और बसेस भी काफी पिकअप हुई। हालांकि नंबर आंकड़े बहुत कम है एज कम्पेयर टू आपके अदर सेगमेंट्स के बट काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है नंबर्स में क्योंकि अलग अलग स्टेट्स भी अब अलग अलग स्कीम्स लेके आ रहे हैं अपने, जैसे जीरो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गया, आपको उसके लिए कोई रजिस्ट्री कॉस्ट नहीं देना पड़ता गाड़ी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल हो तो। ऊपर से जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है उसके साथ वो मर्ज करके उनको फायदा दे रहे हैं कस्टमर्स एज वेल एज यूजर्स को। तो इसके वजह से जो है काफी अभी बढ़ोतरी हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट।
2: यहाँ पर रोने

0: थोड़ा सा हम और समझना चाहेंगे, विशेष रूप से जो नए श्रोता हैं और ईवी गाड़ियों को लेकर थोड़े से आशंकित रहते हैं, सरकार की नीतियां विशेष रूप से उपभोक्ताओं को किस रूप में उन्हें आकर्षित करने के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं, साथ ही जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए क्या योजना है, यह यदि आप बता सकें तो मुझे लगता है कि श्रोता अधिक लाभान्वित होंगे और जो नई अपनी गाड़ी को लेकर विचार कर रहे हैं उन्हें अपना फैसला करने में सुविधा होगी।
1: सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स को जो फायदा हो रहा है वो अंडर पीएम इटरा स्कीम एज वेल एज अभी जो पीएलआई स्कीम जो लॉन्च हुई है उसमें काफी फायदा हो रहे हैं। जैसे अगर आप 50% डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड अगर मटेरियल डालते तो आपको काफी बढ़िया उसमें से गवर्नमेंट उसको आपको टैक्स रिबेट देती है ऊपर से सबसे पहले। फिर उसके बाद फिर अब जीएसटी जो 5% हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उसकी वजह से भी काफी फायदा हुआ है मैन्युफैक्चरर्स को, मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज कस्टमर्स दोनों को। उसी कारण जो है अभी जो इतना जो जंप हुआ है पिछले 5-6 महीने में जो सितंबर से मतलब जो 5% जीएसटी लागू किए थे उसके बाद से ही इतनी बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी अब कट करेंगे तो मैन्युफैक्चरर्स भी उसी हिसाब से अपनी गाड़ी का अपना अनुमान लगा देते हैं कि भाई इसमें अगर हमको इतना परसेंट देना है कस्टमर्स को तो हम भी अपने प्राइस को इतना कर सकते हैं। तो इसके कारण जो है क्या हो रहा है कि प्राइसेस जो है काफी पहले के मुताबिक काफी अब अफोर्डेबल बनते जा रहे हैं। ऊपर से क्या कर रही है कुछ कुछ कंपनीज क्या कर रही है कि आप जो है ना आपको लाइफ टाइम बैटरी का वारंटी दे रही है जिस कारण कस्टमर्स को भी अब ये लग रहा है कि भैया देखो अगर मैं गाड़ी 15 साल के लिए भी यूज करूंगा चाहे 8 साल के लिए भी अगर मेरे को गाड़ी के लिए बैटरी के लिए अभी लाइफ टाइम दे रहे हैं तो मेरे लिए काफी है। क्योंकि आपने भी खुद भी अपने देखा होगा कि कस्टमर जो है 7-8 साल से ज्यादा गाड़ियां नहीं रखती हैं।
0: जी,
1: ऊपर से ये भी कर दिया है कि अभी कुछ कुछ गाड़ियों में ये कर दिया कि ओएम्स ने क्या कर दिया कि अभी पूरे उम्र भर के लिए मतलब फॉर द लाइफ गाड़ी का बैटरी जो है वो उसको बोला कि वारंटी दे दिया उसका कि कुछ भी वेयर एंड टीयर होगा तो हम लोग जिम्मेदार रहेंगे। प्लस उसमें से और क्या हुआ है कि अगर ये भी नहीं तो उन्होंने कहा कि अगर आपको 3-4 साल बाद भी अगर आपको नहीं लगती है कि अच्छा मेरे को मैं ईवी यू नो मैं ज्यादा दिन तक नहीं रख पाऊंगा मुझे अच्छी नहीं लगी क्या नहीं तो आपको अशोर्ड बाई बैक ऑफर भी दे रहे हैं कस्टमर्स को। उसमें क्या होगा कि जैसे आपकी गाड़ी आपने मान लो 15 लाख की खरीद ली तो आपको अशोर्ड बाई बैक 3 साल के अंदर आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि बोलेंगे भैया ठीक है आपने 3 साल चला ली जो गाड़ी की वैल्यू होगी मार्केट की वो हम आपको देंगे गाड़ी आप हमें वापस कर दीजिए। तो ये कंपनीज की तरफ से अगर ऐसा ऑफर आ रहा है तो मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि यू नो इसमें तो हमारे लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है मतलब दे डोंट सी उनको नहीं लगता कि इससे कुछ उनको नुकसान होगा। तो इस कारण जो है वो नंबर जो है काफी जंप हो रहे हैं इस साल के शुरुआत से।
0: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो नंबर निकल के आ रहे हैं गाड़ियों की बिक्री के, वह किस सेगमेंट में सबसे अधिक दिख रहा है, पैसेंजर कार में या टू व्हीलर में या थ्री व्हीलर में? आपने पहले ही बताया कि जो कमर्शियल यानी व्हीकल हैं उसमें अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम आंकड़ा है, लेकिन बाकी में क्या स्थिति है, कौन बाजार सबसे तेज गति से बढ़ रहा है?
1: सबसे तेज गति से जो बढ़ रहा है वो तो जाहिर है कि वो टू व्हीलर ही है
0: जी।
1: जो शुरू से ही मतलब टू व्हीलर जो है वो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट जब सेटअप ही नहीं थी तब से टू व्हीलर का ही पहले सबसे ज्यादा चलन चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। तो अभी भी टू व्हीलर ही है जो करीबन 2 लाख के करीब बिक रहे हैं महीने का। उसके बाद आता है थ्री व्हीलर क्योंकि इसमें ये क्या हो रहा है कि टू और थ्री व्हीलर में जो है वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज और सब्सिडीज है वो कंटिन्यू चल रही है फेम टाइम से। तो चाहे फेम वन हो फेम टू हो और अभी इवन पीएम भी ड्राइव हो उस कारण क्या हो रहा है कि टू व्हीलर जो मार्केट है और थ्री व्हीलर मार्केट है वो बढ़ते जा रहे हैं।
0: यहाँ पर यदि हम ये समझना चाहें कि इन गाड़ियों का टू व्हीलर का थ्री व्हीलर का पेनिट्रेशन महानगरों में है, छोटे शहरों में है, राज्यों की राजधानियों में है, या जो छोटे कस्बा हैं, छोटे कह लें कि शहर हैं, वहां भी हम थ्री व्हीलर का और टू व्हीलर का विकास देख रहे हैं?
1: ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी जो है थ्री व्हीलर जो सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो आपके छोटे छोटे शहरों में भी उसका बढ़ोतरी हो रहा है अभी। और टू व्हीलर जो भी है वो महानगर के अलावा जो टीयर टू हमारे टीयर थ्री टाउन्स हैं वहां भी उनका ज्यादा चलन चल रहा है। और थ्री व्हीलर में भी इंटरेस्टिंगली जो हमारे जो कमर्शियल थ्री व्हीलर जो 1 टन के नीचे आते जो छोटा ट्रक जिसको बोलते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: छोटा टेम्पो टाइप जो होता है वो भी बहुत सारे बिक रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है आजकल ई कॉमर्स कंपनी जो है अपने ट्रांसपोर्ट के लिए वो भी एनवायरमेंट के लिए थोड़ा बहुत अपना वो दिखा रहे हैं कि केयर फॉर एनवायरमेंट उस वजह से वो लोग भी ये थ्री व्हीलर जो थ्री व्हीलर या छोटा 4 व्हीलर टेम्पो जो है छोटे ट्रक से उसको अपना रहे हैं जो इलेक्ट्रिक के हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि उसकी सेल्स भी बढ़ोतरी हो रही है जो हम L1 कैटेगरी बोलते हैं जिसको। तो इसमें क्या हो रहा है कि टू व्हीलर थ्री व्हीलर के सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है। उसके बाद आता है फोर व्हीलर जो अपने पैसेंजर व्हीकल्स हैं, वो करीबन 30,000-32,000 के करीब बिक रहे हैं हर महीने, जो कि बहुत ज्यादा आता है क्योंकि हम महीने में करीबन 4 लाख गाड़ियां बेच रहे हैं साल महीने का,
0: जी
1: तो उसमें से अगर 30-40 हजार भी अगर लोग खरीद रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल
1: और अभी ट्रक्स और बसेस का है कि ट्रक्स का अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ट्रक्स का अभी भी कुछ कुछ टेस्टिंग फेज चल रहा है, और पीएम ड्राइव में भी ट्रक्स के उसमें ज्यादा अभी लोगों का होमोलोगेशन नहीं हुआ है, इस वजह से ट्रक्स का

0: अभी कमी है, लेकिन बसेस का ये है कि कमर्शियल बसेस और जो हमारे ट्रांसपोर्ट बसेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपनी तरफ से लॉन्च कर रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके, उसमें ये हो रहा है कि बसेस की भी अभी तादाद अभी बढ़ते जा रहे हैं स्टेट्स में, चाहे छोटे हो या बड़े हो, चाहे हमारे असम हो गया हो, महाराष्ट्र हो गया हो,
1: जी
0: आपका गुजरात हो गया हो, तमिलनाडु हो गया हो, अपने दिल्ली में आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री ने अभी हमारे दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च देवी करके जो
1: जी
0: जो
1: जी जी
0: बसेस जो छोटे हैं जो 32 सीटर होते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वो भी इलेक्ट्रिक के रूप में निकल रहे हैं अभी, अपार्ट फ्रॉम जो बड़े बसेस हो गए जेबीएम या टाटा अशोक लेलैंड के।
1: जी जी
0: तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो बढ़ोतरी हो रही है वो चारों तरफ से होने जा रही है अभी, छोटे शहरों से बड़े शहरों से सब मिलके, और मेट्रो सिटीज बोल लीजिए वहां से सब बढ़ के ज्यादा अभी बढ़ते जा रहे नंबर्स।
1: यानी वास्तविक अर्थों में हम कहें तो वास्तव में हम क्रांति की दिशा में ईवी वाहन सेगमेंट में देख रहे हैं। यहां पर हम ये समझना चाहेंगे कि जैसे हमने शिफ्ट किया था सीएनजी की तरफ, उसके बाद हम ईवी में जा रहे हैं, अभी चार्जिंग सिचुएशन क्या महानगरों और छोटे शहरों में है और इसको लेकर सरकार की क्या नीतियां हैं?
0: सरकार ने ऑलरेडी पीएम ई ड्राइव के अंदर भी जो पॉलिसी लॉन्च की थी उसमें ऑलरेडी ये भी मेंशन था कि चार्जिंग स्टेशंस का भी हम लॉन्च करेंगे, और स्पेशली ऑन द हाईवेज जहां पे लोगों को चाहे मतलब आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम आधा घंटा लगता है फास्ट चार्जिंग करने में,
1: जी
0: उसमें क्या होता है कि आपके 80% जो गाड़ी जो है वो चार्ज हो जाती है, सो आप अपने नेक्स्ट जर्नी में आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए भी जो ऑयल कंपनी है हमारे जैसे इंडियन ऑयल हो गए, भारत पेट्रोलियम हो गए, इन सबके साथ भी गवर्नमेंट टाई अप करके वहां पे भी अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं। उसमें उसमें क्या होगा कि अभी जो थोड़ा सा माइंड में ये रहता है कि मैं दिल्ली से अगर मैं लखनऊ जाता हूं तो मैं कितनी बार रुकूं
1: जी
0: हाईवे
1: जी
0: पे, तो
1: बिल्कुल
0: उसके लिए अभी क्या हो गया कि अभी जो आप गाड़ी खरीदेंगे उसमें आपके साथ एप्स भी लॉन्च हो गए हैं, उस एप्स में आप ये पता भी कर सकते हैं कि जो मैं जा रहा हूं तो मेरे को कितनी बार रुकना पड़ेगा, आप किलोमीटर काउंट कर लेते हो, और आपको कितनी बार चार्ज करना पड़ेगा, और ये भी दिखा देता है कि वहां पे जो चार्जर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है वो अभी खाली पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ, और ये भी कर दिया अपार्ट फ्रॉम जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है उसके अलावा ये भी कर दिया कंपनी जो कुछ कुछ कंपनीज है, आई थिंक मेरे ख्याल से ज्यादातर सारी कंपनीज है इंक्लूडिंग लग्जरी व्हीकल कंपनी जैसे मर्सिडीज हो गए, बीएमडब्ल्यू हो गए, इनके ऐप में ये होता है कि उनका जो नियरेस्ट आपको जो डीलरशिप है, चाहे आपको जैसे हाईवे में सपोज आपको नहीं मिला तो आपको कैलकुलेट करके दे देगा, अगर आपको वहां नहीं मिला तो आप हमारे डीलर में जाके कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये प्रोवाइड कर देते हैं। और अभी रूरल की बात करें तो मैं कहता हूँ कि रूरल में सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि चार्जिंग स्टेशन लगाने के, वहां पे आपको कोई यहाँ किसी से आपको आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा कुछ कुछ इलाकों में दिल्ली जैसे शहरों में जैसे एनसीआर नोएडा हो गया जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जो आरडब्ल्यूज हैं वो लोग मना कर देते हैं, कभी भी केसेस आए कि उन्होंने बोला कि हम इसकी आप चार्जिंग पॉइंट लगाओगे तो इसकी वजह से बिल्डिंग में आग लग सकती है, हालांकि जो इंजीनियर्स होते हैं वो सारा चेक करके लगा के वो तभी इंस्टॉल करता है कि देख के कि भैया वायर में कोई कहीं भी शॉर्ट सर्किट तो नहीं होगा, या कभी वो सब सेफ्टी मेजर्स लगा के करते हैं, बट फिर भी लोगों के माइंड में रहता है कि ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाएंगे तो कभी भी यहाँ पे आग भी लग सकती है, तो सेफ्टी हजार्ड्स की वजह से भी वो लोग काफी अभी उसमें भी क्वेश्चन करते हैं। बट रूरल एरिया में ये होता है कि ज्यादातर सबके पास अपना अपना गाड़ी पार्किंग स्पेस होता है घर के आंगन में, घर के साइड में,
1: जी
0: तो वहां उनको सबसे ज्यादा इसनेस आ रहा है कि रूरल एरिया में सबसे ज्यादा उनको अच्छा लग रहा है कि वहां पे कोई हमें किसी से आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, अपना अपना घर है, उनका मकान है, उसके साथ साथ में अपना अपना चार्जिंग पॉइंट लगा के इजिली आप अवेल कर सकते हैं।
1: जी
0: स्पेशली टू व्हीलर्स में भी ऐसे हो रहा है, टू व्हीलर्स में एक तो स्वैपिंग ऑफ बैटरी ऑलरेडी है ही, और ये कि घर के साथ में आंगन में आप अपने चार्जिंग लगा सकते हैं स्कूटर को या टू व्हीलर को।
1: जी बहरहाल हमारे सामने क्या
0: जरूर
1: चुनौतियां हैं रोनेंद्र, ईवी पूरा सेगमेंट को आगे बढ़ने में, और कब तक हम उम्मीद करें कि ये पेट्रोल या डीजल गाड़ियों के पैरेलल भले ना आए लेकिन उन्हें चुनौती देने की स्थिति में धीरे धीरे आ जाएं?
0: देखिए, चुनौती तो ऑलरेडी अभी शुरुआत हो चुकी है, जैसे कुछ कुछ कंपनीज की गाड़ियां ले लो तो आजकल जो उस सेगमेंट की गाड़ियां हैं वो आपके पेट्रोल व्हीकल के करीबन जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है, जैसे किसी में 10-20 हजार रुपए का बस फर्क होगा जो कि हमारे सीएनजी और पेट्रोल व्हीकल में जैसे होता है या डीजल व्हीकल में होता था,
1: जी
0: तो अभी वो गैप जो है वो अभी बहुत ज्यादा क्लोज हो रहा है। और उसके बाद ये हो रहा है कि कॉस्ट जो है जो आपका जो यूजर पैटर्न पे डिपेंड करता है कि आप कितना एसी चला रहे हो, कितने स्पीड में चला रहे हो, ये भी बहुत मायने रखता है, और जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये है कि आप सिटी में जितना चला रहोगे उसमें आपको ज्यादा कहीं रेंज मिल जाए, क्योंकि उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसमें ये होता है कि आप जितनी बार ब्रेक मारोगे बैटरी भी थोड़ी बहुत चार्ज होती रहती है, तो अगर वो 200 का क्लेम करती है तो 200, 190 तक, 195 तक वो सिटी में दे ही देती है। हाईवे में फर्क इसलिए थोड़ा पड़ जाता है कि आप जैसे हाई स्पीड में चला रहे होंगे, एसी ऑन होगा आपका, तो ये होता था कि उसमें थोड़ा बहुत कम रेंज मिल सके। इसलिए सबसे ज्यादा अभी हाईवे के लिए तैयारी कर रहे हैं कि आप हाईवे में जाएंगे तो आपको कहीं दिक्कत ना हो। जैसे आप कहीं कॉफी पीने के लिए रुकते हैं आधा घंटे के लिए, आजकल 40 मिनट तो आप रुक ही लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि जब तक आप चाय कॉफी पी रहे हो तब तक आपकी गाड़ी भी चार्ज हो जाए 80%। तो ऐसा कर करके आप जो है हाईवे का जर्नी आराम से आप कवर कर सकते हो। और हाईवे में ये हो गया कि आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने भी इतने बढ़िया बढ़िया हाईवे बना दिए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती कि आपको आराम से रेंज मिल जाता है और आपको ब्रेक लेके आराम से आप तब तक अपना गाड़ी भी चार्ज कर सकते हैं। और जो गाड़ियां जो करीबन 500 किलोमीटर की रेंज दे रही है वो तो आराम से, मतलब एक तरफ की जर्नी तो मतलब जो 300 किलोमीटर होंगे, 350, एक तरफ की जर्नी तो एक चार्ज में ही कवर कर लेता है। और आप जहां भी रुके होंगे तो वहां पे भी आप अगर चार्जिंग स्टेशन होगा तो वहीं पे आप चार्ज करके, आपको हाईवे में रुकने की जरूरत ही नहीं अगर आपको 350 किलोमीटर कवर करना, तो आप उसी को चार्ज करके दोबारा उस सिटी से वापस आके अपने पॉइंट में भी पहुंच सकते हैं।
1: श्रोताओं, ईवी क्रांति हो चुकी है, आप इसके सहयात्री कब बनेंगे ये फैसला आपको करना है। देश में प्रदूषण बढ़ रहा है और उसमें ईवी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। आप सभी श्रोताओं की ओर से हम अपने विद्वान विशेषज्ञ रोनेन्द्र सिंह को श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के बढ़ते उपयोग और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रोनेन्द्र सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। इस समय रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब आपको कुछ ही पलों में सुनवाते हैं कार्यक्रम महफिल।

कार्यक्रम महफिल सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। महफिल कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं सुखविंदर सिंह, कमाल खान, शंकर महादेवन, शाजी मंजूर और विभा शर्मा की आवाजों में चंद गजलें। तो चलिए श्रोताओं, गजलों का सिलसिला हम शुरू करते हैं सुखविंदर सिंह के इस गजल से।

श्रोताओं, इन्हीं गजलों के साथ आज का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। आज आपने सुना सुपेंद्र सिंह को, कमाल खान को, शंकर महादेवन को, शाजिया मंजूर को, विभा शर्मा को और जयश्री शिवम और उदित नारायण को। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम सुरों के रंग। कार्यक्रम सुरों के रंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, बारिश हो रही है, मौसम भीगा भीगा है और बारिश में भीगने का मजा कुछ और होता है, लेकिन ज्यादा न भीगेगा क्योंकि इसमें बीमार पड़ने की संभावना रहती है। तो लेकिन बारिश का आनंद हम लेते हैं। चलिए इस गीत के जरिए आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मस्ती का ये गीत। शान और स्नेहा की आवाज़ों में समीर के बोल हैं और संगीत है आनंद राज आनंद का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूर्य किरण छवि के साथ। आप सुन रहे थे तक्षक फिल्म का गीत सुजाता त्रिवेदी की आवाज में। अब आपको सुनवाते हैं गुरु फिल्म का गीत श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की आवाज में। गुलजार के बोल हैं।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं संपन्न होता है। आशा करती हूँ आपको सभी गीत पसंद आए होंगे, बरसात के गीत। तो बरसात का आनंद लीजिए, आप मुझे इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आपको हम लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहाँ से आप सुनेंगे समाचार हिंदी और अंग्रेजी में, बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOC का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The lower house witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including alleged police action against students during the protest over the NEET paper leak issue. The Supreme Court today directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a Standard Operating Procedure, SOP, for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases. India has brought back 274 fugitive criminals from 36 countries between 2019 and 2026. The Ministry of Home Affairs said that to strengthen action against fugitives, the government enacted the Fugitive Economic Offenders Act in 2018. It added that India has developed an integrated intelligence-led and technology-driven model to combat fugitive criminals. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel that sank in the Red Sea off the coast of Yemen today. In a statement, Ministry of External Affairs said, all 13 Indian nationals have been rescued. It said, the Indian embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Yemeni authorities for the safety and security of the crew. The ministry thanked the Yemeni authorities for their support. It said the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region are deeply worrisome. An Air India flight AI2379 operating from Phuket to Delhi today experienced a brief in-flight turbulence related event during cruise, resulting in a momentary change in altitude. The aircraft landed safely in Delhi and all passengers and crew have safely disembarked. The aircraft was carrying 137 passengers and 8 crew members. Air India said that of these, 13 passengers and 4 crew members sustained injuries and were taken to hospital for medical evaluation. It also confirmed that there have been no serious injuries as of now. The Election Commission has revised the schedule of the ongoing Special Intensive Revision SIR of the electoral roll in Delhi and Maharashtra. According to the revised schedule, the house-to-house verification by booth-level officers will continue till the 17th of this month. The draft electoral roll will be published on the 24th of this month, while the final electoral roll will now be published on 27th October. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh today said that ethanol is a big opportunity for the farming sector, provided its policy is farmer-centric and the correct price of the crop reaches the farmer directly. During a meeting with a delegation of the All India Kisan Coordination Committee held in New Delhi, Mr. Chauhan heard all the suggestions of farmer leaders and assured that the government will take their views on ethanol seriously. India has termed the so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce, saying such hollow exercises cannot hide reality. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal pointed out that the real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. In badminton, unseeded Indian pair Krishna Prasad Garga and Pruthi Krishnamurthy Roy upset sixth seeds Kalimpong Charo Enkita Morn and Warapol Songsanga of Thailand 21-16-21-18 to advance to the men's doubles second round at the Korea Masters Tournament in Asan today. And that is the end of this news bulletin.
4: श्रोताओं, आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।